आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वधिया वधाईया राग तन परवार पर

0: मारो सतगुरु सूत के वैरी ना जाए, मिन मारो सतगुरु सूत के वैरी ना जाए,
1: मारो सतगुरु सूत के वैरी ना जाए, मारो सतगुरु सूत के वैरी ना जाए,
0: सतगुरु वाले काट दे दो हाथी उठाए, सतगुरु वाले काश दे दो हाथी उठाए, हो।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: हालत पलत मुखे उजल

0: रामचंद्री राग के अंदर धन गुरुनाथ देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों कहीं जागता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वसत के अवतारी पुरुष ने, उसे उस शरीर शास्त्री भी ने। अतिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते जी इस विधि नू कौन जानता है कि जो पुरुष का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष दे कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है तो उसके अंदर मां भी अंश भी है, पिता भी अंश भी है, पुरुष दे कण भी हैं और नारी दे कण भी है। कहने ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि उसके अंदर पुरुष दे कण से पूरे ने, नारी अधूरी है अर्ध अंग, और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी दे कण से पूरे ने, पुरुष अधूरा है अर्ध अंग। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल से तस्लिम किया कि बाहर की यह नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल से उसने यह गल अंदरों से तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी के अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ध अंग है और नारी करके पुरुष अर्ध अंग है, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाल की कशिश पैदा कर गया, पुरुष के अंदर नारी की कशिश, नारी के अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जड़ी संपूर्णता है, ये पशुओं की तरह ना हो, मनुख आकर मनुख है, ये को सोचनी है, ये को विचार ने, तो इस समाजिक रसम नो धर्म के दायरे में चलाने की आज्ञा हो, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन, और जिस रिश्ते के विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जाओ, मोर गुरबाणी भी लगे, और इसे तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ध अंग की संपूर्णता करते सन, तो इसका नाम उन्होंने रखा कि विवाह। गुरमति यह नाम रखा गया है आनंद कार, खुशी का एक कम, क्योंकि अर्ध अंग संपूर्ण हो रहा है। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता दे वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, ये पुत्र भी है, ये पड़ोसी भी है, ये दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की बहन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है, और फिर किसी रीत से पत्नी। सारे रिश्तों में पकियाई होवे, पवित्रता होवे, इस वास्ते विचोला चाहिदा सी। तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख थोड़ी भरा बने ते चंगा बने, लोकी मान करन के भरा होवे ते ऐसा होवे, ये पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने, और ये पुत्र बने ते ऐसा कि मां बाप फकर करन, ये दोस्त बने ते ऐसा कि दोस्त उससे मान करन, और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने, उसकी खुशी बने। हूबहू इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी, ते बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन, ते साडे घर का बिछड़िया होया फुल सी पहले महक वंडी पेके घर दे, हुण महक वंड रही है सौरे घर, और मां बाप की खुशी बनी रहे, महक फैल रही है, खुशबू फैल रही है। ते पत्नी बने आदर्शवादी, ते भैन बने महान, दया मान करन, भैना मान करन। सारे रिश्तों में पकियाई ते पुख्तगी ते लाजमी है। ते पत्नी होवे ते ऐसी कि सारिया ही खुशियां का सोमा बन जाए पति, और पति मान करे। तो इस लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे, किसी महान नाल संबंध जोड़े, और इन्हों दो आत्मावान के संगम, इन्हों दो शरीर के संगम में कोई मदद चाहिए है। जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हैं, दोहां नूं जोड़ने तीसरा चाहिए, दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए, दो कपड़िया नूं जोड़ना है, कोई धागा चाहिए, दो इत्तां नूं जोड़ना है, तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है, दो लकड़ा नूं जोड़ना है, श्रेष किल कुछ ना कुछ है चाहिए है, दो दिलों नूं जोड़ना है, इत्थे दो दिल जोड़ने, दो विचारां नूं जोड़ना, दो ख्यालां नूं जोड़ना, तो कोई तो चाहिए है, बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नूं इक करदा है, दोहां ते मोर लांदा है। ते हुण मैं दो मिनट आपके होर लवां ते समाप्ति करा। रिश्ते दुनिया दे दो तरह दे हैं, खून दे रिश्ते, ख्यालां दे रिश्ते, विचारां दे रिश्ते, मन दा रिश्ता। जिहड़े खून दे रिश्ते ने, इन्हां दीआं प्रणालियां तिन ने, नानके दादके सौरे। बे खून दा रिश्ता दादकियां नानकियां ते फिर सौरियां, पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नूं जिथों जन्म मिलदा है पति पत्नी तो, ये रिश्ता खून दा रिश्ता नहीं। बच्ची किसी घर की, बच्चा किसी घर का खून तो एक नहीं है। किस तरह आख्या जा सकता खून है, खून एक नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने भी नहीं मने। सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलों की सांझ है, विचार की सांझ। एक जो दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। महाराज कहते ने असि पति पत्नी उसनों कहने, विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो, ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने। पर इतनी गल स्पष्ट है, जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही, वरना नहीं। जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा होता है, और जिथे प्यार है उससे एतबार भी आता है, एतबार भी मनुख का उथे नहीं जाता। और जिथे एतबार है कहने ने सदाचार का वास्ता भी उथे ही है, और जिथे सदाचार है करतार दियां सारियां बख्शिशां भी उथे ही, करतार दियां सारियां न्यामतां भी उथे ने। आप सारे सियाणे बैठे हो, बच्ची बच्चे भी ए भी दोणे सियाणे ने। ये रिश्ता विचारां दी सांझ दा, ख्यालां दी सांझ दा। एक जो दोए मूर्ति, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੌਰੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਰੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਲ ਗੁਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਥਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ, ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਗੜਾਂਗੇ। ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
3: ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
2: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਸਹੁਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਤੋ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ, ਨਾਨਕੇ, ਸਹੁਰੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਬਿਰਾਹ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ, ਨਾਨਕੇ, ਸਹੁਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵੱਈਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਜਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਖ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਬਰਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਦਾਦਾ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਖ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਬਰਾਤਾ ਪਰਦਾਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ।
नहीं ननसार माता पर माता ब्रज माता मामे मामो मासे मौसा बेबद बिख्याता है। तीसरा रिश्ता सौरे आदा पत्नी करके या पत्नी दा पति करके चलता है। नहीं ससुराल सास ससुर सारो ओ सारी नहीं ब्रिटिशर जाचक ओ ना गाता है। असन बसन धन धाम काहू में ना देखे हो जैसे गुरु सिख साध संगत को नाता है। भाई साहब के मिले में सिखी दे नाते तो दाद के नान के सौरे सारे कुर्बान करवा। जो सिख का सिख नाल रिश्ता है, जो सिख का गुरु नाल रिश्ता है, इस तरह का होर कोई रिश्ता नहीं। खैर हुण दे रिश्तियां दियां ये प्रणालियां तिन ने, लेकिन विचारवाना ने संबंधां दियां जो चार प्रणालियां बयान कीतियां ने, मैं थोड़े सामने इन्हां नूं खोलण दा यतन कर रहा, क्योंकि मनुख ऐसा प्राणी है। मैं फिर दोहरावा, संबंधां तो बिना नहीं जी सकता। संबंधी चाहिए, दूजा तीजा चौथा पंजवा चाहिए। कह दिता जांदा कल्ला ते रब भी ना, पर कौन दसे रब ते है ही कल्ला। उन्हूं किसे संबंधां दी लोड़ नहीं। और जब कोई जपदियां जपदियां स्वयं परमात्मा का रूप हो जांदा है ब्रह्म ज्ञानी, किसे संबंध की लोड़ नहीं। हुण मनुख नूं संबंधां विच जीवना पैंदा है, संबंधी चाहिए। विचारवाना ने, दार्शनिक लोगों ने, धार्मिक ज्ञानियों ने ये जो चार प्रणालियां मनिया ने, एक सब तो नीवी एक सब तो शिखर दी, दो विचकार दिया सब तो नीवी। अपने लोग को कीनो ने, इस नाल इस वास्ते संबंध जोड़े है, वक्त सिर कम आ जाता है, लोड़ां की पूर्ति कर देना है। इस करके चंगा लगता है, उंज इस नाल कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वक्त पैण पे कम आ जाता है, कम सार देता है, लोड़ां की पूर्ति कर देता है। इस वास्ते प्यारा लगता है, चंगा लगता है, उंज इस नाल कोई संबंध नहीं। ये संबंध पशु भी जोड़ लेंदे ने, पट्ठे पाई जाओ गौ पिछे भजी आउंदी, टुकर पाई जाओ कुत्ते पिछे आई जाते। ये संबंध पशु भी जोड़ लेंदे। अपने लोभ को कीनो में, ये संबंध मनुख मनुखा नाल जोड़ सकता है, ये संबंध मनुख परमात्मा नाल जोड़ सकता। उंज ते परमात्मा तेरे नाल कोई मतलब नहीं सी, पर तू कुछ इच्छावां दी पूर्ति कर देना, तू वक्त सिर कम आ जाना। तेरे अगों अरदास ते जोगड़ी कर दें, वक्त सिर कम आ जाना, उंज तेरे नाल कोई मतलब। अपने लोभ को कीनो में, ये पहला संबंध है लोभ दा लैण दा, ये वक्त सिर कम आ जाता, लोड़ां दी पूर्ति कर देता है, किसी मुश्किल दे वक्त कम आ जाता है, जरूरत दे समय कम आ जाता है, उंज इस नाल कोई मतलब नहीं। मैं फिर अर्ज करा, ये संबंध मनुख मनुख नाल जोड़ सकता है, परमात्मा नाल जोड़ सकता है। कोई मुश्किल आ गई है, कोई विपता आई है, चलो गुरुद्वारे चलिए अरदास करा लिए, उंज कोई मतलब नहीं है। रोज जाना, नितनेम करने का, जप तप करने का, कथा कीर्तन सुनने का कोई मतलब नहीं। गुरु कुछ कम पै गया, तू कम आ सकदा, चलो आउंदे हां तेरे अगों अरदास करदे।
अपने लोभ को की नौमे। कुछ लेना है, लोभ लेना है, इस करके नोमित्र बनाया है, उनसे कोई मतलब नहीं। मैं फिर दोहरावा, ये रिश्ता पशु नहीं जोड़न दे समर्थ हो जाने, टुकर पाई जाओ कुत्ता पिछे आई जाता, पट्ठे पाई जाओ पशु पिछे आई जाते। उन्होंने पता पट्ठे मिलते पैने, टुकर मिलते पैने, उंज के पिछे चलन का की मतलब है? उंज इसके पिछे चलन का कोई मतलब नहीं, पट्ठे पाई जाता, उंज इसने नाल कोई संबंध नहीं, टुकर पाई जाता। अपने लोभ को की नौमे, ये सब तो नीवा संबंध है, ये पशु भी जोड़न दे समर्थ हो जाते, ये पशु भी जोड़ लेंगे। इस विच अगर भावें ये मनुख है, दो पैर ने, दो हथ है, दिल दिमाग है, तामी धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक पशु है, क्योंकि ये वही संबंध जोड़ता है जो पशु भी जोड़ लेंगे। इंसानियत मानवता पता है कदों जन्म लेंदी है? उदों जन्म लेंदी है, संबंध जोड़े है, लोभ करके नहीं, लैण करके नहीं। तू उंज ही प्यारा लगता है, उंज ही चंगा लगता है, तेरा होना ही काफी है, तू होवे यही काफी है, तेरा होना ही चंगा लगता है, तेरे बोल ही चंगे लगते हैं, तेरी सूरत ही चंगी लगती है, तेरा कोल होना ही चंगा लगता है, तेरे कोल कुछ लेना नहीं। इनू कहने प्रेम, प्रेम पशु नो मनुख बनाता है, लोग मनुख नो पशु बना देता है। इतनी मेहनत करते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे खुलासा है। ये दो शब्द मैं फिर दोहराऊं, प्रेम पशु नु भी मनुख बना देता है, और कई पशु मनुख जैसे देखे गए कहते ने। महात्मा बुद्ध जंगल में तपस्या कर रहे सन, एक हाथी उन्हां दा करमंडल चुक के निरंजना नदी चो पानी भर लिया, अगों रखता, उच्चे उच्चे दरख्तों को अंब तोड़ लिया, केले तोड़ लिया, जंगल भरे पे सन, अगों रख देता। और जब रात पै जाए तो चारों पासे घूम के पहरा देता, कोई जंगली जानवर इन्हां ते हमला न कर। की रिश्ता है महात्मा बुद्ध नाल? उंज चंगा लगता है, बैठा है किसे मस्तिच किसे सरूर विच, चंगा लगता है। ये हाथी नूं भी चंगा लगया, शायद आपनूं पता होवे सारा बौद्ध समाज हाथी की पूजा करता है, जैसे हिंदू समाज गऊ की पूजा करता है। कुछ पशु ऐसे हैं जिन्हां दे अंदर मानव होण दी संभावना छुपी हुई है। बहुत सारे मनुख ऐसे ने बिल्कुल मनुख नहीं ने, पशु ही ने, पशु संभावना की पशु दी छुपी हुई है, नहीं पशु। करतूत पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। एक हाथी का जिक्र धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी बार बार करते हैं। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गरा ते छूटा महिमा नाम कहा लो वरनो, राम कहत बंधन ते टूट। तो खैर मैं अर्ज करा, महात्मा बुद्ध इस हाथी नो उंज ही चंगा लग रहा है। लेना की सी उस भिक्षु कोल की लेना सी, जिदे कोल कुछ भी नहीं सी, सिर्फ तन देते एक कपड़ा से, उदे कोल ते कुछ भी नहीं, हाथी ने उदे कोल की लेना। पर महात्मा बुद्ध का होना चंगा लग रहा है, चंगा लग रहा है। प्रेम इन्हें हाथी नो मनुख बना देता है, किधरे सप भी मनुख बन जाता है। देखे सप ने
ਇਹ ਮੁਕੜਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਛਾਂ ਵੰਡਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਕੜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਪਨੀਅਰ ਛੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਸੱਪ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖੋਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੋਭੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਖਾ

लोभ ने हलका कुत्ता बना देता है। हर एक नूं कट्टी जांदा है, भरा नूं, प्यो नूं, पड़ोसी नूं, हर एक नाल धोखा करी जांदा है, हर एक नाल छल कपट करी जांदा है। लोभ मनुख नूं पशु बना देंदा है, प्रेम पशु नूं मनुख बना देंदा है। सब तो नीवा संबंध है लोभ, अपने लोभ को कीनो में। ते परमात्मा मतलब ते नहीं है तेरे नो, की करिए, कुछ लेना है तेरे को, कुछ मिल सकता है, तू वक्त सिर कम आ सकता है। इस वास्ते तेरे नाल संबंध जोड़े है, कुछ तेरे नाल कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। ये रिश्ता मनुख मनुख नाल जोड़ सकता है, ये रिश्ता मनुख गुरु नाल जोड़ सकता है, ये रिश्ता मनुख प्रभु नाल जोड़ सकता है। लैण दा रिश्ता, लोभ दा रिश्ता, अपने लोभ को कीनो मीत। मैं एक दफा दोहरा के फिर अगे जो है चला, ठुकर पाई जाओ कुत्ता पिछे आई जाता, पट्ठे पाई जाओ गौ पशु पिछे आई जाता, गई जाओ संबंध जुड़े रहते हैं। इधर देना बंद होया, इधर संबंध टूट गया। अपने लोभ को कीनो में मित्र बनाया, अपने लोभ की खातर कम आ जाता है, वक्त सिर कम आ जाता है, लोड़ पैर से कम आ जाता है, कुछ कम इस तो सवर सकते हैं। इस करके चंगा लगता है, उंज इस नाल कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रेम का संबंध तेरा होना ही काफी है, तेरे को कुछ लेना नहीं है, तेरे तो सदके जाना है, कुर्बान जाना है, निछावर जाना है। प्रेम निछावर होना चाहता है, सदके होना चाहता है, कुर्बान होना चाहता है। लोग दूजे की कुर्बानी लें, बगौर मुकाबला करना, लोग तो दूजे नूं कुर्बान करना चाहता है, प्रेम दे मनुख स्वयं कुर्बान होना चाहता है। भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अगों दस्त वस्ता अर्ज करते हैं, गुप्तम के जान दे हम दाता, अज मैं सोचता सी थोड़े कदमों च की रखा, की रखा, सब कुछ मामूली लगता है, सब कुछ तुच्छ लगता है, की रखा। फिर मैं हे गुरुदेव सोचे है कि जान मेनू बड़ी प्यारी है, अपनी सब तो ज्यादा जान ही प्यारी होंगी महाराज, जे कबूल करो ये जान थोड़े कदमों च रख देना, गुप्तम के जान दे हम। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रमाण करते हैं, नंद लाल तू व्यापारी का लड़का है, तेरा पिता बहुत वड्डा व्यापारी सी, फिर दीवान बनया, व्यापार खड़ा है देण ते लैण ते, लैण ते देण ते, लैणा ही लैणा है, लैणा ही लैणा है, देना कुछ नहीं, लो लैणा ही लैणा है, लैणा ही लैणा है, देना कुछ भी नहीं, लो। फिर ऐसा भी है, देना है, लेना है, लेना है, देना है, व्यापार व्यापार, देना ही देना है, बदले च कुछ भी नहीं लेना, दान दाता, देना ही देना है, बदले च कुछ भी नहीं लेना, ये मनुख नूं दाता बनांदा है। देना है, लेना है, लेना है, देना है, ये मनुख नूं व्यापारी बनांदा है। लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, देना कख भी नहीं, ये मनुख नूं सोम बनांदा। मनुखां नूं इन्हां तिन्हां श्रेणियां च गिण सकदे आ, सोम व्यापारी दाते। सब तो ज्यादा भीड़ मिलेगी सोमा, और कबीर कहिंदे ने सोम बंदा धन दा चौकीदार आउंदा है, मालक नहीं आउंदा। सोमे धन

अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जदे मथन चोटी दे धनाढ़ हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये प्रथा चरणामृत दी थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ये प्रचलित आपने कीता और ये अधिकार एक नो नहीं पंजा नु दिता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। केड़े पंज जो गुरु नु प्यारे ने ते जिना दे अंदर गुरु दा प्यार है, रोम रोम विच गुरु दा प्यार, ऐसे पंज जो गुरु नु प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिना दे अंदर है, ओ वारी वारी पंज बाणियां पढ़न, जपजी साहब, जाप साहब, सवई है, चौफई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नो बाटे वे दे जो पानी है उस दे च रखन, ताके हिरदे नो जोड़ के पड़ी हुई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी दे प्रवेश करन, ताकि वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे विच लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच वासना है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच प्रबल हंकार है, अखां राही प्रगट होंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट होंदा है। और वो सख नूं अगर एक टेक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जाता है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करदे ने। ये प्रथा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विच खंडा नाल फेरी जाना, खंडा शक्ति का प्रतीक है। जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया, खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज उत्पत्ति दा खेल रचाए बनाया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे बोल, ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया, शक्ति तो होया। खंडा शक्ति दा प्रतीक, उसे तो बाणी आई है, उसे तो संसार आया है, उसे तो अमृत आया है। इस तरह बाणी दे राही पानी दे शक्ति दा प्रवेश, परमात्मा दा प्रवेश, उसके रस दा प्रवेश। पंज प्यारे फिर अगां चल के इसनू छकांदे ने जो अभिलाषी ने, जिन्हां दे अंदर अमृत दी तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनू स्कूल दी यूनिफॉर्म पहननी पैंदी है, दाखला लेना पैंदा है, एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है, दाखला फीस भी देना पैंदा है। शुरुआत विच धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी, सिर दे। विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन नूं। ते ये सीस हे गुरुदेव जिस दिन थोड़े चरणा ते रखिया सी असीं उस दिन दा ही समझ लिया सी थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है। इस तों बाद जब पंज प्यारे ने ये प्रथा चलाई धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म के मुताबिक, इत्थे भाव ओ ही रखना है शीस गुरु का है। इस वास्ते जब शीस गुरु का है तो शीस गुरु वर्गा

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हमारे खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musia baby, yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए।

मेरी कमाई बड़ी, मैं धरती ते पेड़ा बन के उपजी, मैं सर्दी गर्मी नू सहारिया, मैं चक्की नल अपने आप नू पिसा लिया, पर मेरा रंग मेरे विच है। कहनगे बेशक मेहंदी विच रंग है, भांडे विच घोल के मेहंदी रखीए, पर जिन्नी देर तक मालक चरना दियां तलियां ते मेहंदी लांदा नहीं, याद रखे उन्नी देर तक रंग नहीं प्रगट हो सकता। रंग उहदे कोल अपना है, पर चरण ता साई दी कृपा ने ना, हाथ ता मालक दी मेहर ने। जे मेहंदी प्रगट करन वाला अपने चरण ही अगे ना करे ते इकला मेहंदी दा रंग की करेगा। अपनी कमाई भावे मेहंदी दी तरह होवे, पर प्रगट ता होवेगी जे उहदी कृपा होवेगी। बाबा जी ने बचन कहे ने कि कबीर मेहंदी करके घालिया, घालिया दरते कमाई साधना, आप पीसाए पीसाए अपने आप नू पी दिता, पर इनी कमाई तो बाद तैं शह बात ना पुछिया, कबू ना लाई पाए। मालक ने बात नहीं पुछी, चरना नल नहीं जोड़िया, तैं शह बात ना पुछिया, कबू ना लाई पाए। अगे हजूर ने क्या महला तीजा, नानक मेहंदी करके रखिया, कली घालना नहीं, सो सौ नदर करे, ओदी कृपा हो जाए, ओदी बख्शिश हो जाए। सो सौ नदर करे, आपे पीसे, आपे कसे, आपे ही लाए ले, ए पिरम प्याला खसम का जय पावे। तै दे फिर इस तुक नू थोड़ा जसी विचारिए। पहला सी आप पिसाए पिसाए, मेहंदी करके घालिया, हुण इस विच गुरु अमरदास जी ने कहा आपे पीसै आपे कसै आपे ही लै लै। जेड़ा पीसना है ओनू भी कृपा च लै जा, जेड़ा लगना है ओनू भी कृपा विच लै जा, ते गुरमुखा जेड़ा रंग प्रगट होना है ओनू भी कृपा विच लै जा। कि कर्मा करके विछोड़े पैंदे ने, देखी किते घालना दा कर्म हंगता बन जाए ते ए भी विछोड़ा पैदा कर सकदा। कालना है पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, कालना तो बिना नहीं पढ़िया जा सकता। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पुहंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुड़क्यो, अदक अंग बुद्ध बांधे। फिर बज गया, इन्हें कर्म ने ता छुड़ाना सी। बाबा जी ने ते क्या आयो सुनन पढ़न को बाणी, पर होया की के पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पुहंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुटक्यो, अदक अंग बुद्ध बांधे। प्यारे इन विद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका कर्म नहीं। अगली तुक वल ध्यान दिया जे, हार पर्यो स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध विवेक। कर्म अनेका कीते ने, थोड़ा जा सिर में तरतीब संखेप जा चलने। कर्मा करके बिछड़िया, कृपा करके मिलाप होवेगा। ओ साई तरस खा जाए, फिर जो महापुरुष कह रहे सन उसे बचन नु आधार बना के ना। बारह माह दे अंदर एक ता बेनती सी अपने के मालक तू मिला लाए, ते दो गल्लां होर कीतियां। ओ बचन है इत्थे मेरा ख्याल एक बार अर्ज करके गया कि शहर विच आ जाइए, भावें असी जानकर होइए रिश्तेदार दे, पर जिन्नी देर तक ओदा नाम ते ओदे घर दा एड्रेस पता नहीं, उन्नी देर तक गली विच लंघदियां होयां घर अगो लंघ जाइए सानू पहचान नहीं रहे। ये कहिए भी मेरा रिश्तेदार ता रहिंदा है पर मैनू नाम दा नहीं पता, एड्रेस दा नहीं पता, पर इन्ना पता ओ है जरूर। कहणगे शहर विच हो सकदा ओ होवे, ते जिस घर अगो लंघ रहा हो सकदा ओ तेरे रिश्तेदार दा ही घर होवे। जिन्नी देर तक नाम ते पता नहीं घर किवें पहुंचेगा। परमात्मा खैद च कोई शक नहीं, हर ज्ञानी हर विद्वान हर एक धर्म दी जिंदगी जीन वाला कहिंदा परमात्मा है। है ता जरूर, पर जिन्नी देर तक ओदा नाम नहीं उन्नी देर तक धाम कित्थों मिलेगा। नाम नाल ही घर लभना है। ते सतगुरु ने दो बचन कहे कि नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। अपना नाम दियो, अपना पता दियो, नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। ते जिदे कुल नाम है हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चलताम,
ਜਿਸ ਦਾ

0: सिमरन कबहु का प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभ कै सिमरन कबहु न छूरे
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभ कै सिमरन सहज समानी
0: प्रभ कै सिमरन निहचल आसन
1: प्रभ कै सिमरन कमल विकासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार
1: प्रभ सिमरन नंदन पार
0: से सिमरे जिन आप सिमराए
1: नानक ताके नानक
2: से जन जिन का प्रभ मैं
1: नानक तिन जन सन्नी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन पै

0: हर का नाम जपत होए सुखिया।
1: लाख करोड़ी बंधन परे
0: हर का नाम जपत निष्करे।
1: अनेक माया रंग तिख न बजावे
0: हर का नाम जपत आवे।
1: हे मार्ग हे जात अकेला
0: हर नाम संग होत सहेला।
1: ऐसा नाम मन सदा त्याइए
0: नानक गुरमुख परम गत पाइए।
1: टूटत नाही कोट लख बाही
0: नाम जपत ते पार पराही।
1: अनेक विघन जाए आए संगारे
0: हर का नाम तत्काल हरे।
1: अनेक जोन जन

0: ये महाप्यान तपत बो काम
1: के नाम की तुम शाम
0: जहाँ त्रिखा मन तुझया करखे
1: संत
0: जना के मन बस राम
2: संत जना के मन विश्राम संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर का नाम
0: जस करत संत दिन रात
1: हर औकत साध।

0: हर हर जन के ओट सताड़ी
1: हर पर नाम जनवर न जाने
0: पोत पोत जन हर रस राते
1: सुन समाज नाम रस राते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का पंथ

0: संदे हमें छोड़े
1: को जन्म मरण ते डरे
0: साधु जना की सरनी भरे
1: जन को प्रभु दर्श पियास
0: नानक ताके भगवान दासा
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान।

0: राखे।
1: उमरी औसत तुम ते होए
0: नान केवल न जान सोए।
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्बल कर्म।
1: क्रिया में उत्तम क्रिया
0: साध संग धर्म तुम ले लिया।
1: उद्यम में उद्यम पला
0: हर का नाम जपो जी सदा।
1: वाणी में अमृत वाणी
0: हर को जा।

0: ऊपर साख सैन
1: लोके जाओ बैठ को जैन
0: यो निर्गुण गुण कशु न बुझै
1: नक्ष ले हो तो नानक सियै
0: प्रसाद तर ऊपर सुख बस है
1: सोत प्रात नीर बनता समसे
0: हे प्रसाद पी वह सीत जला
1: सुखदाई पवन पार के मुला
0: हे प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल सामग्री संग साथ बसा
0: इने हस्त पाव कर नेत्र रसना
1: इसे त्याग अब संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे
1: नानक काट लियो खयाले
0: आद अंत जो रखन हार
1: कैसे प्रीत न करे गुहार
0: राखी सेवा नाम निध पावे
1: कैसे मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सब सदा हजूरे
1: ताको अंदर नानक दूरे
0: राखी टहल पावे दरगह मान
1: इसे बसारे मुक्त जान
0: सदा सदा यो पूलन हार
1: नानक रखन हार अपार
0: संध्या को डी संग रचै
1: साथ छोड़ चूर संग मचै
0: जो छठ ना सो अस्थिर कर माने
1: जो मन सो दूर प्राणे
0: छोड़ जाए किसका श्रम करे
1: संग सहाय जस पर है
0: चंदन लेप उतारे तुए
1: लाडा पीत प्रसंसर होए
0: अंध कूप में पतत बकराल
1: नानक काट ले हो कल्याल
0: तूत पशु की मानस जात
1: लोक बचारा रे दरात
0: हर वेख अंतर मल माया
1: बाहर
0: ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापे रोग स्वान
0: अंतर अगन बाहर तन सुहा
1: लाल पाथर कैसे तरे
0: रखा अंतर बसे प्रभ आप
1: नानक के जन से समाप
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: वहाँ
0: बाजार से बुझे डोरा
1: वहाँ
0: बिशन पद गावे घूंग
1: तो
0: पिंगल पर्वत पर भवन
1: नहीं हो तुम्हारा उस भवन
0: करतार करना मैं दीन बेनती करे
1: तुम्हारी कृपा करे।

0: क्रोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार महालोक करो
0: कहूं जुक्त बयान ने कही जन्म
1: नानक राख लियो अपन कर कर्म
0: तुम ठाकर तुम पैर दास
1: जियो बिन सब तेरी आस
0: मात पिता हम बारक तेरे
1: तुम्हारी कृपा में सुख तले
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊंचे ऊंचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र।

से सो चालन हार बटाऊ सो जो लावे नेह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या राज जो

0: तिन प्रभ जाता करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया
0: आपे आप आप करत नबेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा
0: पाव स्यानप सगल ते रहत
1: जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस

0: सार के संग मुख उज्जवल होता,
1: सार संग मन सलीक होता,
0: सार के संग मिटे अभिमान,
1: सार के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: सार के संग पूजे प्रभु नेरा,
1: सार संग सब होत मेरा,
0: सार के संग पाए नाम रतन,
1: सार के संग ऊपर जतन,
0: सार की महिमा बरने कान प्राणी,
1: नानक सार की शोभा ब्रह्मा समानी,
0: सार के संग अगोचर मिले,
1: सार के संग सदा परखे,
0: सार के संग आवे है बस पंचा,
1: सार संग अमृत रस पंचा,
0: सार संग होए सब की रेना,
1: सार के संग मनोहर रेना,
0: सार के संग न कथु तावे,
1: सार संग अस्तित्व मन पावे,
0: सार के संग माया ते पिन,
1: सार संग नानक रस उपर सान।

0: परमानंद
1: के संग नहीं होता
0: साध के संग तजे सब आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बन आई
1: साध के संग न कब होता वे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस्त अगोचर लहे
0: साधु के संग अजर सहे
1: साध के संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग महल पहुंचे
1: साध के संग दड़े सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान
0: नानक साधु के करवान
1: साध के संग सब कुल उधार
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे
1: साधु के संग सोतन पावे
0: संग संग को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग को वासल लेवा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्वथान गम
0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहि कछु काल
0: दर्शन भेट तोत निहाल
1: साध के संग कलुखत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहां उहां सोहेला
0: साध संग बिछड़त हर मिला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साध के संग न मिलता जावे
1: ब्रह्म साध रद बसे
0: नानक उतरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाव
0: साध संग हरे गुण गाओ
1: साध के संग न मनते बिसरे
0: साध संग सर पर निस्तरे
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग कट कट लीठा
1: साध संग पै आज्ञाकारी
0: साध संग कट गई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध मिटे संयोग
1: साध की महिमा वेदना जाने
0: चेता सुने ते ताव के आने
1: साध की उपमा तह

0: ज्ञानी के दृष्ट समान,
1: जैसे राज राम को लागे दुर्भवान।
0: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक,
1: योगस्था को खोदे को चंदन एक।
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ,
1: नानक जो पावक का सहज स्वभाव।
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
1: जैसे नैर न लागे जला।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास,
1: जैसे तारु पर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के भीतर सतर समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
1: मन अपने है सबसे नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै,
1: नानक इंद्र लाभ करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी जीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया,
1: ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना पाया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की समृद्धि।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योगा।
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा,
1: ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार महा।
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी रे साथ संबंधा।
0: ब्रह्म ज्ञानी के हो सो भला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सो भला।
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सर संसार।
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग,
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग।
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी अमृत जागत।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी के हर सदा आनंद।
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहजन वास,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता।
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत,
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मानत।
0: ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रव्याप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये।
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की

0: कथया न जाए अध्य अखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
2: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नाम सार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
2: ब्रह्म ज्ञानी सर जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता
2: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण वर्ष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
2: ब्रह्म ज्ञानी का
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार।

0: दुख ते रहत
1: नानक ओट मने को ऐसा परस
0: सुनो सो जिस ऊपर सो परसान
1: की माया से होए
0: कर्म कार्त हो वैने कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे संतान अंतर सिमरन गोपाल अवरह नाम जपावे।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
1: Bhakti ki mate uttam hovai,
0: bhant ki tehal kare nit neet,
1: mantan har pe visan parit,
0: ke charan hirde basave,
1: nanak aisa bhakti bhagwant ko paave,
0: o pandit jo man par budh,
1: ram naam atam mein sodai,
0: ram naam sar ras peeve,
1: us pandit ke apdesh jag jiye,
0: har ki katha hirde basave,
1: so pandit mein
0: वेद प्राण सिमृत बुझे।

0: तेरी कोट होए पुजारी,
1: तेरी कोट पहचानी वाली,
0: तेरी कोट पे तीर्थ वासी,
1: तेरी कोट पहचानी वाली,
0: तेरी कोट वेद के स्रोते,
1: तेरी कोट तपिसर होते,
0: तेरी कोट आत्म ध्यान तार है,
1: तेरी कोट अवतार विचारे,
0: तेरी कोट नवतन नाम त्याव है,
1: नाम करते का अंतर पावे,
0: तेरी कोट पे अपमानी,
1: तेरी कोट अंतर ध्यानी,
0: तेरी कोट कृपण कठोर,
1: तेरी कोट
0: तेई कोट पर दर्प को हिरे,
1: तेई कोट पर दुख ना करे,
0: तेई कोट माया श्रम माहे,
1: तेई कोट पर ईश्वर माहे,
0: जित जित लाभ होते।

0: कई कोट पवन पानी वै संतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव रंग इंद्र से छतर
0: सगल समग्री अपने सूत धारे
1: नानक के जस पा।

0: कहत है राखे
1: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे
0: गई कोट पै बैरागी
1: राम नाम सब लागी
0: गई कोट प्रभु को खुंजनते
1: आदर में पार ब्रह्म लहंते
0: गई कोट दर्शन प्रभु प्यास
1: तिन को मिलियो प्रभु अविनाश
0: गई कोट मांगे सत संग
1: पार ब्रह्म लागा रंग।

0: तेई कोट पार ब्रह्म के दास
1: तेनो वचना तम प्रकाश
0: तेई कोट तत् के भेते
1: सदा निहारे को नित्रे
0: तेई कोट नाम रस पीव है
1: अमर भय सत्संग ही जीव है
0: तेई कोट नाम गुण गाव है
1: आत्म रस सुख सहज

0: प्रभु होए पंडित करे बख्यान
1: प्रभु मोर तारी रावे ध्यान
0: प्रभु तत्ती रथ स्नान
1: प्रभु शिव साधक मुख ज्ञान
0: प्रभु कीट हस्त पतंग होए जिया
1: मानक जोर पर मे परमिया
0: नाना रूप जो स्वागी दिखावे
1: जो प्रभावे तिवे नचावे
0: जो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: कभू साध संगत हो पावे
1: शांति बहुर न आवे
0: अंतर होए ज्ञान परगास
1: स्थान का नहीं विनाश
0: मन तन नाम रते एक रंग
1: सदा बसे पार भ्रम के संग
0: जो जल मह जल आए खटाना
1: जो जो

0: संत के दुखन आर्जा कटे
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे
0: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन
1: संत के दुखन सो बाते हीन
0: संत के हते को रखे न कोए
1: संत के दुखन तान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग निंदक भी करे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संत के दुखन

0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दर्द मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाई।

0: जिस घर प्रसाद टूटे हारोग
1: नान सोजन सदारोग
0: मंदिर का था मैं थमन
1: गुर का शब्द मन है समन
0: खान नाव चढ़ तर
1: प्राणी गुरु चरण रक्त निस्तर
0: अंधकार दीपक प्रगास
1: गुरु दर्शन देख मन होए विलास
0: महाध्यान में मार्ग पावे
1: साधु संत में ज्योत पड़ावे
0: संतन की भाषा दूर
1: दान की
0: मूर्ख काहे बिल लाइया
1: भूख
0: सुख प्रभ देवन हार
1: तू से
0: कुछ करे सोई सुख मान
1: काहे
0: बसताई तेरे संग
1: लाटर।

0: परे नाही के सुखोए
1: आपे
0: बिना आपे दाना
1: जाना
0: और हम परमेश्वर गोविंद।

0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: सत सत पद
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: सत
0: नाम प्रभु का सुखदाई
1: सत नानक बनते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत
0: निरत बुझे जे कोई
1: नाम जपता की अर्थ होए
0: आप सत की।

जगदीश विस्वे गुर का मन माने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ सर्व निदान जी का दाता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म सहस स्यान पुलया न जाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत भेटत संग राम गुण रवे सुन कर बचन करन आगाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए जिहबा एक औसत अनेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित करह सद बलिहारी सतगुर अपने एहो हर रस पावे जन कोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगट है।

0: संत जना मिलकर हो विचार
1: एक सिमरन नाम वार
0: और अपाप सा मीत विसार हो
1: चरण कमल जल में उतार
0: अन्न कारण सो प्रभु समर्थ
1: कर रहो नाम हर वक्त
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: स्थान को चार कूठ उठतावे
1: सो तन हर सेवा के पावे
0: सुख को नित बादशाह मीत।

0: समातम।
1: उसका वर्ण चिन्ह न जापत,
0: अनाथ शोको किसे व्यापत,
1: अपने आप पार ब्रह्म।

0: एक हर अगम अपार
1: सब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: सब
0: आप है आप अपनी ज्योत तरह अपने चलते आप कारने हार अविनाशी सुख अपने आसन
1: है
0: पूर्ण करता प्रभु सोय जब व्यक्त गोचर
1: प्रवेकनाथ
0: निरंजन गोचर गादे अपने आप आपी चार
1: जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता है निरंजन निरंकार निर्वाण स्वरूप केवल जगदीश ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे करावन कारण हार अपनी शोभा आपन संग बनाई सर्व कला आप हर परवीन आपन आप और तारा।

0: पूरी अमृत जा की दृष्ट
1: दर्शन
0: अन्न कमल जाके अनूप
1: सुंदर रूप
0: अन्न सेवा सेवक।

संत संग अंतर प्रभिठा सगल सुमिगरी एक स्कट माहे नौ निधि अमृत प्राप्त।

0: सास सास सिमरह गोविंद सास नित त्याग हो तरंग आप छोड़ बेनती करहो हर धन के भर लेहो भंडार
1: प्रेम
0: कुशल सहज आनंद नरक निवार उधारो जियो चित चित बहो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: पंजन पूरन के पाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ए आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अनेक लारे
0: सुनत कमावत होत उधार सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द अनाहद वाजे प्रगटे गोपाल महात के माथे सरन जोग सुन सरनी आए मिट गए बैर पे सब रेन प्रसन्न पे गुरुदेव आल जंजाल विकार ते रहते दर प्रसाद दया प्रभ धारी प्रभ की औसत करहो संत मीत रुक्मिणी सहज गोविंद गुण नाम सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए सब ते ऊच पाए स्थान हर धन खाट चले जन सोए हेम शांत रिद नव निद विद्या तप जोग प्रभ ध्यान चार पदार्थ कमल

0: दया करनी, दम रखना, दमन करना, संयम रखना, करन बड़े औखे ने। सच्चे पातशाह किताबां पढ़निया, ग्रंथ पढ़ने बड़ी एनर्जी लगती। तुसी यह भी कह दिता पौन हारी, कोई साधना है तो पौन दा हार कीता, बड़ी कमाई होवे ताई बंदा जीव दे चस्के ते रोटी ते काबू पाए। महाराज जिन्होंने ग्रिस्त भी नहीं धारण किया, अपने आप नूं रोक के रखिया। पौन आहार जति जत तार, सवे सो विचार हजार के देख। हजारा महाराज कहिंदे मैं देखे जी सतगुरु। फिर कहना की चाहते हो महाराज? कहिंदे बस इको गल कहनी चाहना, श्री भगवान भजे बिन भूपत। दान कर रहा पर सिमरन नहीं कर रहा, विखावे दा तीर्थ नहा रहा पर अंदर दी मैल नहीं धो रहा, बार मुखी इंद्रिया दा दमन करदा पिया पर फुरने ते काबू कोई नहीं, मनवा काबू च नहीं। महाराज कहने बार मुखी पाठ करदा, पाठ जबान कर दी, मन पता नहीं की पड़ी जांदा। वेखो इस गल नूं सुनो गुरु साहब जी की, ए खंडन दी गल थोड़ा जी, ए तां महाराज सुमार्ग पांदे पए, सही रस्ता दस रहे। सतगुरु कहिंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत। श्री भगवान परमात्मा वाहगुरु जी सब दा श्रोमणी, माया दा भी पति। इत्थे भूपत दर्थ दास ने वाहगुरु मालक कीता, क्योंकि एदे विच राजसाज दा जिक्र नहीं, ए तां सारा कर्म कांडियां उन्हां दा जिक्र है जिहड़े कठिन तप कर रहे। गुरु साहिब कहिंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत, उस मालक वाहगुरु दे सिमरन तो बिना, ओदे भजन तो बिना। महाराज कहिंदे ने एक रति बिन, एक विच रत्ते तो बिना, रत्ती नहीं सिमरन रत्ते जाना, एक रति बिन एक सिमरन विच रंगण तो बिना, एक ना लेख है, एक ना लेख है। महाराज कहिंदे जेड़े मैं उत्ते गिण के आया कि तीर्थ नान दया दमदान, एक ना लेख है। सो संयम नेम अनेक विशेख है, एक ना लेख है। इस तरह अर्थ होणगे दे, इन्हां विचों एक भी लेखे च नहीं। वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान कपेख है, एक ना लेख है। सिमरन तो बिना एक भी लेखे च नहीं। पौन आहार जते जते जतार, सब ऐसो विचार हजार का देख है पर एक ना लेख है। इस तरह अर्थ सारे सवैये दे होणगे। इन्हां विचों एक सिमरन तो बिना, बंदगी तो बिना, नाम तो बिना कुछ लेखे च की पाएगा तेरे। हजूर सच्चे पातशाह एदे सारे सवैये दा दाता जी दा निचोड़ एवे जी, बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे। भगत नामदेव जी गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द, बनारस विच उल्ट के तप करे ते उत्थे मर भी जाए। बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे, अगन दहे जौंदा अग भी साड़ दा तूनिया च। बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे, अगन दहे काया कल्प की जाए। कल्प चिरजीवी रखने लई दवाइयां खानियां, जड़ियां बूटियां जोग मत वालियां। काया कल्प की जाए, असमेद जग की जाए। आ जे इस सवैये दे अर्थ, ओ जग करे जिदे विच घोड़ियां दी बलि दित्ती जांदी, असमेद जग। असमेद जग की जाए, सोना गर्भदान जी जाए। सोना फरूट विच रख के जिवें पेठा नहीं हुंदा, चीर के विच सोना भर दिता, उत्तो बंद कर दिता किसी नूं पता ना लगे। गुरु ग्रंथ साहिब दुआई देख के कहिंदे ने लोको समझो इस गल नूं, बनारसी तीर तप करै उल्ट तीर्थ मरै, अगन दह काया कल्प की जाए, असमेद जा की जाए, सोना गर्भ दान दी जाए, राम नाम सर तौ ना पूछै। श्री भगवान भजे बिन भूपत, राम नाम सर तौ ना पूछै। छोड़ छोड़ रे पखंडी मन, कपट ना कीजै, खरका नाम नितै नित दीजै। गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदारा नहाइए, गोमती सहस गौ दान कीजै। हजारा गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे, ए भी नदी। महाराज कहिंदे ने आत्म जो नरमाइल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सर तौ ना पूछै। अस दान गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नितो नित कीजै। घोड़ियां दा दान कर, गौवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर, पर सच्चे पातशाह कहिंदे सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581-1900।

0: ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਲ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਪੜੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਗੋ ਮਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ, ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਪੜ ਲਈਏ, ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੋਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਕਰੇ ਚ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੂਈ ਗਣਤ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਅਸਲ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਪੜ ਸੀਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਆਂਦੜ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਉਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਭੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਭਾਣਾ ਮਾਨਣ ਮਨ ਥਿਰ ਕੀਜੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਬਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ, ਦਸ ਸਾਲ, ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚਾ।
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਆਈ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁੰਡਲਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੱਪਣੀ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਪੇਰੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਨ ਦੀ ਧੁੰਨ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੱਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जीवन शक्ति दा मूह भी थल्ले है, सपने दी तरह कुंडल मार के सुती हुई है। और ये शक्ति नाभि तो थल्ले जप तप कीर्तन साधना द्वारा जद ए कुंडलनी जागदी है ता अगे छे चक्रां दी एक रोक है जिन्हां नूं विन के ए शक्ति पहुंच दी है आग्या चक्र तक, परमानंद तक, परम रस तक, परम निधान तक। ए शक्ति उपर उठे बनदी है राम रस नाम रस, और ए शक्ति थल्ले जाए इसे नूं कहिंदे ने ए काम रस है। जीवन दा प्रवाह थल्ले दा वेग काम रस है, जीवन दे प्रवाह दा उपर दा वेग नाम रस है, राम रस है। शक्ति ए जागे किवें? वाहिगुरु वाहिगुरु दा चिंतन, गुरमंत्र दा जाप, मूल मंत्र दा जाप, गुरबाणी दा पाठ, इहदे नाल ए सुत्ती होई शक्ति जागदी है। सब तो प्रथम नाभी तो उपर जिहड़ा चक्र है वह है मूल आधार। इहदे उपर एक होर चक्र है जिहनूं कहिंदे ने सवदिष्टान। इहदे उपर फिर एक होर चक्र है जिसनूं कहिंदे ने मणिपुर, और इस तो अगे एक होर दुनिया है जिसका नाम है आहत अनाहत चक्र। और जद ए शक्ति कंठ तक पहुंचती है और इथे पै चक्र नू विन के अगे लंघती है, उस चक्र का नाम है विशुद्ध। सब तो अखीरला चक्र है आग्या चक्र। इंज कह लो अध्यात्मक मंडल दे ए पड़ाव ने जिथों लंघ के जीवन शक्ति नूं उपर जाना पैंदा, परम धाम तक पहुंचना पैंदा, परम आनंद तक पहुंचना पैंदा। मनुख एक शक्ति है, जीवन एक शक्ति है, और शक्ति रस दी प्राप्ति कर सके इस तरह दी उसके अंदर तीबर इच्छा है। रस थल्ले भी है, रस उपर भी है, रस लोक दा भी है, रस परलोक दा भी है, रस शरीर दा भी है, रस आत्मा दा भी है, रस संसार दा भी है, रस निरंकार दा भी है, रस थल्ले दा भी है, रस उपर दा भी है। पानी दा वेग थल्ले अपने आप जांदा है, जीवन शक्ति भी थल्ले अपने आप जांदी है। किसे प्रेरणा दी लोड़ नहीं, मनुख नूं कोई प्रेरणा देण दी लोड़ नहीं भी तू क्रोधी बन जा, लोभी बन जा, कामी बन जा, बेईमान बन जा, झूठा बन जा, ये अपने आप बन जांदा है। सतवादी बनना है, संतोखी बनना है, दयालु बनना है, खिमावान बनना है, शीलवान बनना है, तो फिर उद्दम उपराले ते वसीलियां दी लोड़ है। जिवें पानी उपर उठे तो बिना प्रेशर दे उपर नहीं जा सकदा, हू बहु जीवन शक्ति नूं भी कोई दबाव चाहिदा पिछे जिस दे आसरे ते ए उपर उठ सके। ओ दबाव ओ प्रेशर है केवल जप। जप करदिआं ए शक्ति उठदी है। जबान तो जप दी धुनी कन्ना दे राही जद अंदर प्रवेश करदी है तां फिर सुत्ती हुई जीवन शक्ति जागदी है। इस नूं सतगुरु जी कहिंदे ने सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाई। अनंत काल तो अनंत जन्मां दे सड़ी जीवन शक्ति सुत्ती ही रही है। और जीवन अक्सर मनुख सौ के ही बतीत कर देंदा है, जागत सोया जन्म गवाया। ए शक्ति जागे उपराले ने सतसंग ते जप, और जैसे शक्ति उपर उठदी है मूलाधार चक्र नूं विन के उपर उठदी है तो मनुख दी काम वासना समाप्त हो जांदी है। मनुख दे काम रस विच कोई रुचि नहीं रहिंदी, क्योंकि काम दा थल मूलाधार तो थले है ते शक्ति मूलाधार तो उपर उठी। और उपर उठदे आं इह वासना खत्म होई, प्रार्थना दा जगत शुरू होया, वासना दा जगत खत्म होया। लेकिन सिर्फ वासना ही मिटी है, सिर्फ काम रस दे च ही रुचियां घटियां ने। अजे परम निधान परम आनंद दी प्राप्ति नहीं होई। जिन्हां दी जीवन शक्ति मूला आधार तो भी उपर नहीं उठदी, देखण दे चाया भावे उन्हां दी उम्र 80-90 साल दी ही क्यों ना हो जाए, काम वासना उन्हां दी समाप्त नहीं होंदी। इह वासना उन्हां दे अंदर बनी रहिंदी है। पुंडर केस कुसम ते धौले, सपल पताल की बाणी, लोचन सरमै बुद्ध बल नाठी, ता काम पावस माधानी। भगत लोचन जी महाराज दा कथन, केस चिट्टे हो गए, चेहरे ते झुरियां पै गईं, बचन शुद्ध नहीं निकले दे और अखां विच दीद नहीं रही, कमजोरी ने चारों पासे शरीर नूं निढाल कीता है, लेकिन काम वासना दी मधाणी इस टुटी हुई मटकी देच भी चल रही है। पावे मधाणी देच कुछ नहीं रही, चाटी नहीं रही, दही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर इस टुटी हुई खुश्क मटकी दे अंदर भी काम दी मधाणी बकायदा चल रही है। ता काम पावस माधाणी। जैसे जैसे मनुख जप करता है ये शक्ति उपर उठती है और मूलाधार नो विन के उपर उठती है, काम वासना समाप्त। इको एक तरीका है इस वासना तो बचण दा, इस वासना तो उपर उठण दा, वो है जप। ये शक्ति थल्ले जावे तो संसार दा जन्म होंदा है, ये शक्ति उपर उठे तो निरंकार दी दुनिया दे जन्म होंदा है। ये शक्ति थल्ले जाए किसे शरीर नू जन्म देंदी है, ये शक्ति उपर जाए परमात्मा नू जन्म देंदी है। ये शक्ति थल्ले जाए रेत दे च रेत दी ढेरी हो जांदी है, ये शक्ति उपर उठे हीरा हो जांदी है, मोती हो जांदी है, रतन लाल जवाहर बन जांदी है। तो ये पहचान है कि साधना करन वाले दी ये जड़ी शक्ति है ये मूलाधार नू विन के उपर उठ गई है, उदी काम वासना समाप्त हो गई, उदे च रूप दी खिच नहीं रही, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड, हुण रूप नू वेख के ओ अरूप दे दर्शन करेगा। सतगुरु कहिंदे ने रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोए। हुण जगत दी तमाम सुंदरता परमात्मा दी सुंदरता दा बोध करा रही है। हुण परम रूप दे च परम अरूप दे दर्शन हो रहे ने, हुण आकार दे च निराकार दी झलक मिल रही है। इस वास्ते वासना समाप्त, वासना दा जगत खत्म, प्रार्थना दा जगत शुरू होया। प्रार्थना शुरू ही उदों आउंदी है जद शक्ति मूलाधार नू विन के उपर उठदी है। इस तों पहले ते वासना दा जगत है। अगर बंदा जप भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, धार्मिक मंदिरां विच बैठ के साधना भी कर रहा है, जेकर उसकी शक्ति मूलाधार तो उपर नहीं उठी तो उसका यह भजन उसका यह धर्म वह भी वासना है, प्रार्थना नहीं है, सब कुछ वासना है। इस वास्ते अक्सर देखण नू मिलदा है कि धर्म मंदरां विच बैठे साधक संसार दी ही मनोकामना कर रहे ने, ते कामना विच जीण वाला मनुख ते ही कामी है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। भगत रविदास ने गल बिल्कुल स्पष्ट कर दिती है कि मौजूदा दौर विच मनुख दियां कामनावां बहुत वधियां, बहुत वधियां, और मनुख अति कामी हो गया, अति कामी हो गया। कामना संसार दी हुंदी है, वासना संसार दी आउंदी है, प्रार्थना करतार दी आउंदी है। प्रार्थना दे नाल संसार नहीं मिलदा, वासना दे नाल निरंकार नहीं मिलदा। वासना संसार नाल जोड़दी है, प्रार्थना करतार नाल जोड़दी है। तो जैसे जप करदियां शक्ति मूलाधार नूं विन के उपर उठी, प्रार्थना दा जगत शुरू होया, वासना दा जगत समाप्त होया। लेकिन अजे परम निधि परम खजाना परम आनंद दे द्वार नहीं खुले। जप जा रही है, तप जा रही है, साधना जा रही है, शक्ति सहजे सहजे ऊपर उठ रही है। दूसरा चक्र है स्वदिष्टान, जो मूलाधार तो ऊपर है। साधना करदे करदे, जप करदे करदे, अभ्यासी दी सुरत जीवन शक्ति ध्यान दे आसरे ते जैसे ऊपर उठती है, ओ फिर स्वदिष्टान चक्र नु विन के ऊपर उठती है। स्वदिष्टान चक्र विनया गया है, पहचान की होवेगी। इस मनुख दे अंदर मौत दा भय नहीं होवेगा, ये मरण दे भय तो उच्चा उठ गया। मौत दा भय सामने रख के इस तरह दे पुरुष नु डराया नहीं जा सकता, जिसकी शक्ति स्वदिष्टान तो उपर उठ गई है। दरअसल डर विच जीण वाला मनुख इस गल दा सबूत मुहैया कर रहा है कि स्वदिष्टान तो थले जी रहा है। भगत कबीर कहंदे ने, कहत कबीर राम गुण गाओ, आप न डरो ना अवर डरा। मैं उस दुनिया विच पहुंच गया जिथे ना मैं किसी तो डरदा ना ही किसे नु डरांदा। अक्सर ओही मनुख दूजियां नु डरांदा है जिहड़ा किसे तो डरदा है, क्योंकि भयभीत होया मनुख ही अगले नु भयभीत करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी परम ज्ञानी दे लक्षण यही दसदे ने, भय काहू को देत ने नै भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। वास्तविक परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ओही है जो भय दी दुनिया तो उच्चा उठ गया है, ना डरांदा है ना डरदा है। स्वदिष्टान चक्र नु विन के जैसे शक्ति ऊपर उठती है, भय दी दुनिया खत्म, निर्भय दी दुनिया शुरू हुई। निर्भय केवल परिपूर्ण परमात्मा है। साहिबां दी बाणी दा फरमान, डर पे धरत आकाश निखतरा, सिर ऊपर गगन करार। पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निर्भव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुरमुल गाए गुनी। सतगुरु दा ते इत्थे तक फरमान है कि सूक्ष्म रूप देच ग्रह निछत्र सूरज चंद तारे सब डरे हुए ने, पै देच ने, डर दे चने, मर्यादा दे चने। तमाम जीव पशु पंखी मनुख डर दे चने। ये ठीक है कि डर मर्यादा दे च रखन वास्ते चाहिदा है, लेकिन हर वक्त मनुख डरिया होया अपना मानसिक संतुलन गवा बैठता है। किधरे मैं बीमार ना हो जावां, किधरे मैं मर ना जावा, किधरे मेरा कमाया हुआ धन नाश ना हो जाए, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, किधरे मेरा रुतबा कोई खो ना लवे, किधरे जंग देच या मुकदमे देच मैं हार ना जावा। ये भय मनुख नु बने आ रहा है। स्वदिष्टान चक्र नु विन के जैसे जीवन चेतना जीवन शक्ति उपर उठती है, ये भय दी दुनिया खत्म हो गई, निर्भय दी दुनिया आरंभ होई। और परिपूर्ण परमात्मा चूंकि निर्मल है, हुण उसदा ही भय शुरू होया, भाव उदी गल मनन दा अंदर चाव पैदा होया। इसे नू सतगुरु कहिंदे निर्मल भाव पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। परमात्मा आप निर्मल है, उदा भय भी निर्मल है। जगत मैला है, जगत दा भय भी मैला है। जगत दा भय जिस दे अंदर है वो निर्मल नहीं हो सकेगा, ते परमात्मा दा भय जिस दे अंदर है वो मैला कदी नहीं हो सकेगा, सदैव निर्मल होवेगा। बाबे फरीद दे श्लोकां दे साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा एक परम पावन श्लोक है, भय पईए तन खीण होए, लोभ रत विच्चों जाए, ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भव दुरमत मैल गवाए। जिस तरह अगन सोने दी तमाम खोट नू कढ देंदी है, रब्बी निर्मल भय मनुख दे तमाम विकारां नू शांत कर देंदा है, मनुख दे तमाम पतत संस्कारां नू खत्म कर देंदा है। तो स्वदिष्टान चक्र नू विन के जैसे जीवन चेतना उपर उठी, मौत दा भय खत्म हो गया। किसे प्रकार दे भय दा जड़ा बोझ सी ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਿਰਭੈ ਦੁਨੀਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਏ। ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੱਕ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੱਕ, ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਤੱਕ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਰੂਰ, ਉਸਦੀ ਮਸਤੀ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ, ਥੱਲੇ, ਥੱਲੇ। ਕਿਧਰੇ ਧਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰੂਪ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ। ਕਿਧਰੇ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ, ਨਛੱਤਰ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਥੰਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸੀ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿਆਰਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਦ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਤਨੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲਬਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੋਈ 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੂ ਬਹੁ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਸਕੇ। ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੋ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਦਿਸ਼ਟਾਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, जीवन शक्ति उपर उठती है तो फिर तीसरा चक्र है मणि पुरुष, विचारां दी दुनिया, फुरनिया दी दुनिया, सोच दी दुनिया। इत्थे तक जैसे शक्ति पहुंच दिए और इस चक्कर नू विन लिए, फुरने मिट गए, विचार शांत हो गए, भटकना मिट गई, टिकाओ नसीब हो गया, एकाग्रता नसीब हो गई। अगे दी दुनिया जज्बियां दी दुनिया, वलवले दी दुनिया, भावना दी दुनिया। इसे नू अक्सर धार्मिक विचारक ऐसा कहिंदे ने कि एक अकल तो पार दी दुनिया है, एक अकल तो थल्ले दी दुनिया है, एक अकल दी दुनिया है। जो अकल तो थल्ले दी दुनिया है, ये पशुआं दा जगत है। अकल है ही कोई नहीं, मन है ही कोई नहीं, सोचना है ही कोई नहीं। इस वास्ते हजारां साल तो, अणगिणत सदियां तो पशुआं दी जिंदगी देखी दी है, कोई विकास नहीं होया, कोई उन्नति नहीं हुई। कारण मन ही कोई नहीं, विचार ही कोई नहीं, सोच ही नहीं सकते, बुद्धि ही कोई नहीं। तो बुद्धि मंडल तो थल्ले जीवना, बिल्कुल थल्ले जीवना, ये पशुआं दा जगत है। बुद्धि दे तल ते जीवना ये मनुखी जगत है। इत्थे सभ्यता विकसित होंदी है, समाज दे नियम जन्म लेंदे ने, राजनीति दे नियम पैदा होंदे ने, जीवन दे ढंग रंग सब कुछ इत्थे ही आके जन्म लेंदा है। और एक ऐसी दुनिया है जो बुद्धि मंडल तो पार दी दुनिया है, जो अकल तो पार दी दुनिया है। उत्थे अकल भी नहीं पहुंच सकती, उत्थे बुद्धि दी भी कोई पहुंच नहीं। ओ वलवलियां दी दुनिया, जज्बियां दी दुनिया, भावनियां दी दुनिया। इसे नू 20वीं सदी दे मशहूर ओ मारूफ शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक तार्किक नू, एक विचारक नू इस ढंग नाल समझाया। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म है, महफिल नहीं है। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, ए ते रस्ते दा दीप है, तो मंजिल नू छोड़ दी कोशिश कर। ए ते राह दा दीपक है, दीपक दी परिक्रमा ना कर। जो दीपक दी परिक्रमा कर रहे ने ए मनुख ने, ते जिन्हां दी जिंदगी च दीपक ही नहीं जलिया, भाव जो बुद्धि तक भी नहीं पहुंचे, पशु ने। और जो बुद्धि मंडल तो अगे निकल गए, देवते ने, फरिश्ते ने, कहने ने बुद्धि दी दुनिया तो अगे लंघ गए, ये रब दा रूप हो गए, ईश्वर दा रूप हो गए। इस वास्ते असी अक्सर देखते हाँ जो बुद्धि मंडल तो थल्ले है, उन्होंने असी कह दें पागल ने, पशु समान ने। और जिड़ा बुद्धि मंडल तो अगे चला गया, ओदा भी आम संसार नाल तालमेल नहीं बैठता, तो भुलेखे करके उन्हू भी पागल कहना पैंदा। ये दोवें पागल प्रतीत आउंदे ने, बुद्धि मंडल तो थल्ले जो चला गया और बुद्धि मंडल तो जो उपर उठ गया, परे दी दुनिया चला गया। ये दो तरह के मनुख समाज नाल अपना रिश्ता जोड़न विच असमर्थ हो जाते हैं। एक बहुत थल्ले चला गया, एक बहुत उपर उठ गया। एक दी गल इतनी नीवी के पैरां दे थल्लों लंघदी है, एक दी गल इतनी उच्ची के सिर दे उपरों लंघदी है। तो तीसरा चक्र है मणिपुर। जैसे जीवन शक्ति जप करदे आ, तप करदे आ, इस चक्कर नू विन के अगे लंघदी है, विचारां दी दुनिया शांत हो जांदी है, फुरनियां दी दुनिया शांत हो जांदी है, विचारां दा बोझ, विचारां दा तनाव आखिर खत्म होंदा है। बहुता बंदा विचारे, दार्शनिक, फिलोसफर, आखिर जहनी तौर ते बोझल ते होवेगा, लाजमी होवेगा। और जब ज्यादा सोचेगा तो जीवन कोई सार्थक प्रतीत नहीं होवेगा, ज्यादा सोचेगा तो संसार दी अहमियत खत्म होवेगी, ज्यादा सोचेगा उन्हें यह भी महसूस होवेगा कि जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके, तो बेजार हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। बेचैनी बेजारी इस स्याणे मनुख दी पहचान है। पशु कदी बेजार नहीं होंदे, पशु कदी बेचैन नहीं होंदे। क्यों? सोचदे ही नहीं, बस खाना पीना, सो जाना और बच्चे पैदा करने, वक्ती तौर ते उन्हां दी पालना कर लेनी, बस यही पशु दी जिंदगी है। पशु कदी बोर नहीं आउंदा, पशु कदी बेचैन नहीं आउंदा, पशु कदी दुखी नहीं आउंदा। और इस वास्ते पशु कदी पागल भी नहीं आउंदे। हां, ओही पशु पागल होंदे ने जिन्हां नूं मजबूरन मनुख दी संगत विच रहना पै जांदा है, वरना पशु कदी पागल नहीं आउंदे। क्यों? कि बेचैन ही नहीं आउंदे। बेचैन होण वास्ते, बेजार होण वास्ते सोचना ते चाहिदा है। तो जगत दे जितने स्याणे मनुख होए ने, सब तो ज्यादा बेचैन मनुख ने, सब तो ज्यादा परेशान मनुख ने। गालिब दा ते कहना है, परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। एक होर आलम दा कहना है, कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हम को दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। स्याणा बंदा बेचैन हो जाएगा, सोचण वाला बेजार हो जाएगा। बेजारी बेचैनी इस गल दा प्रतीत है कि बंदा बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। छुटकारा किस तरह होवे? या ते बुद्धि मंडल तो बंदा थल्ले गिरे, या फिर बुद्धि मंडल तो उच्चा उठे। थल्ले गिरना जरा सौखा है, इस वास्ते जगत दे तमाम स्याणे मनुख शराब दे रसिया बन जांदे ने। चाहे कवि ने, साहित्यकार ने, कलम दे धनी ने, दिमाग दे धनी ने, ज्यादा सोचण वाले ने, अक्सर शराब दी परिक्रमा कर देन और बुद्धि मंडल तो थल्ले गिर जांदे ने। उदा इक्को इक कारण, बहुता सोच देन बहुती बेचैनी, बहुता सोच देन बहुता ही गम, बहुता सोच देन बहुती बेजारी। क्योंकि प्रतीत हो जांदा जगत ते कुछ भी नहीं, जीवन ते कुछ भी नहीं। तो इक्को इक आसरा रह जांदा बुद्धि तो थल्ले गिरण दा, शराब। पर एक होर भी सहारा है, गुरबाणी कहती है, अकल तो उच्चे उठ जाओ। इस सोच बेजारी बेचैनी दी दुनिया तो उच्चे उठ जाओ। पर ओ मदरा बाजार विच बिकदी नहीं, ओ मदरा खुद बनानी पैंदी है। उसनों गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहिंदे ने, जन्म साखी दी पंक्ति विच, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे, दिन रात जप करदिआं तप करदिआं। जद जीवन शक्ति मणिपुर चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है, तां विचारां दी दुनिया खत्म, फुरनियां दी दुनिया खत्म, सोचण दी दुनिया खत्म। बुद्धि जिथे तक सोच सकदी सी, उस सीमा नूं छू लिया गया, ते हुण सीमा तो पार जाण दी तैयारी है, बुद्धि मंडल तो अगे जाण दी तैयारी है। इस वास्ते अक्सर धार्मिक सियाणे कहिंदे ने कि मनुख दी सोचनी जिथे खत्म होंदी है, रब दी गल उत्थों शुरू होंदी है। संसार दी सोचनी जिथे खत्म होंदी है, परमात्मा दी गल उत्थों शुरू होंदी है। इस वास्ते परमात्मा नूं कदी बुद्धि मंडल विच बंद नहीं कीता जा सकदा, अपने सोच मंडल विच बंद नहीं कीता जा सकदा। कुंडलनी सुरझी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा। जीवन शक्ति जो कुंडल मार के नाभी तो थल्ले सुती पई है, और जिसदा ध्यान जिसदा मुंह थल्ले दी तरफ है, उसनु ऊपर कैसे उठाया जाए? ते आ गया चक्कर नु विन के परम आनंद दी दुनिया दे इह शक्ति किस तरह पहुंचे? इह साधना गुरबाणी दे जो दसी गई है, उसकी मूल पंक्ति यह है, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा। गुरबाणी दा जप करदिआं, गुरु दी संगत करदिआं, साध संगत विच बैठदिआं, कुंडलनी जाग पई, सुरज गई, सुती हुई कुंडलनी जाग पई, जो कुंडल मार के जीवन शक्ति बैठी सी। मूलाधार नूं

0: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੱਜਣ ਕਈ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਟੌਂਕ ਧੁਆਨ ਪਿੰਡ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ
1: ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਛ ਪੰਨੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨੇਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਦਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਮੀਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਮੇਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਮਰਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ? ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਮੰਗੋਲ ਨਸਲ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ? ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਸਾਂਵਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਦੀ ਮਾਇਲ ਆਇਆ, ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਖਲੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸਦਾ ਕੈਸਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਬੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦ ਕਹਿ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, जैनी होवेगा, बोधी होवेगा, कुछ ना कुछ होवेगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो फरमान करते ने, नमस्तम अमजबे नमस्तस्त अजबे, तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, तेरा कोई मजहब नहीं है। तू हिंदू नहीं है, तू सिख भी नहीं है, तू मुस्लिम नहीं है, तू क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोविंद सिंह जी दे, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनो, तू अजब स्वरूप है, तू अजब स्वरूप है। दो नुक्ते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास दे पन्ने रखने ने थोड़े सामने। अगर उसनु व्यक्ति मन लईए ना, तो व्यक्ति एक समय च इको ही थां ते आउंदा है। जिवें तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय इको ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो सतवें पाताल या सतवें आसमान या कोई से सचखंड बैकुंठ दे च बैठा होगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति दी तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय इको ही थां ते आंदा है, सारी थावां ते नहीं आंदा। सतगुरां दी बाणी कहिंदी है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो। हे सिरजन हार, मैं जिथे जाना तू उथे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनु व्यक्ति मन लिये तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं है, हर समय नहीं है। जिवें असी 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले नहीं सी, नहीं सी। हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, ते हर एक 10, 20, 30, 40 साल बाद नहीं होवेगा। बाबा फरीद कहिंदे ने, फरीदा किथे तेडे मापिया, जिन्ने तू जनिया कल ते मां है सी। बाबा फरीद कहिंदे पता नहीं किथे चली गई, 5 साल पहले ते पिता है सी, आज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो परमात्मा नु भी काल दिच बयान करना पेगा, समय दिच बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहिंदे अकाल है अजाल है, उस समय दिच नहीं है, वो है सो है। होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते, वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नु व्यक्ति मन लईए, इस नुक्ते नु बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होवेगा, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनु बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना क्योंकि आप पुरम मना रहे। तो फैसला करना पड़ेगा परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है। अगर व्यक्ति है, जिन्ना जिन्ना ने भी व्यक्ति दे रूप च मने है, वो किधरे पुरुष दी पूजा किधरे नारी दी पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब दा फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए, जैसा परमात्मा नु मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिनू सोचिए, जिनू याद करिए, मनुख दा मन वैसा ही हो जांदा है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जांदा है। अगर उस विच इस्त्री चिंतन सी, इस्त्री दियां यादां सन, इस्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर इस्त्री दा। महामाई की पूजा करे नर से नार होए औतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है, इस वास्ते वो स्त्री ते पुरुष भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने धनाश्री राग दे, सुन मंडल एक जोगी वैसे है, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था, उन्हों सुन समाधि कहने, सुन समाध अनहद तैनाद कहन ना जाई अचर्ज बिस्माद। जिस दिन चलदे हुए विचार मन विच रुक जांदे, निरंकार प्रगट हो जांदा है। जद कोई भी फुरना ना चले, कोई भी विचार ना चले, उन्हों गुरु अर्जन देव जी सुन समाद कहंदे ने। सुखमनी साहब दी पंक्ति, सुन समाद अनहद तैनाद। कितना भी पाठ करदे अंदर साडे विचार चलदे ने, कितना भी वाहेगुरु वाहेगुरु जपी अंदर अपने अपने फुरने चलदे, कितना ही कथा कीर्तन सुनिए ते करी अंदर फुरने चलदे, वो नहीं रुकदे। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाद अवस्था देच जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहने स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुख्तसर में अर्ज करा, परमात्मा की ये शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है रंग रूप तो न्यारी, चक्र चैन तो न्यारी, वर्ण जात तो न्यारी, मजहब तो न्यारी, एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ए ना ले लेना कि जड़ है, नहीं चेतन है। उस शक्ति नो भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, सदीवी है, है। शिवम प्रकाशमान है, शिव दे अर्थ प्रकाश चानना, प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है, अति सुंदर है। इन्हों गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते ने, सत सुहाण सदा मन चाओ। तू सत है, सुहाण अति सुंदर है, सदा मन चाओ, तू सदीवी खिड़िया होया, आनंद स्वरूप है। वैदिक ऋषियां ने भी ऐसा कहा, सत चित आनंद। वो सत है, चित चेतन है, जड़ नहीं है। शक्ति ते अग दे च भी है, अग जड़ है। शक्ति ते पानी दे च भी है, पानी जड़ है। शक्ति ते पवन दे च भी है, पवन जड़ है। परमात्मा शक्ति है, पर चेतन सत चित आनंद, आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख दी चेतना शक्ति तो प्रभावित है, मनुख ताकत तो प्रभावित है। मैं सवेरे इस विचार नु सामने रखिया सी, जिथे ताण हुंदा उत्थे माण हुंदा। इस वास्ते हर मनुख ताण दी तलाश च है, शक्ति दी तलाश च है। ते दूर क्यों जाओ, परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया, ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो न्यारी है। सारा आकार उस तो आया है जिदा कोई आकार नहीं, सारा रूप उस तो आउंदा है जिदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिदा कोई रंग नहीं। चलो मैं अद्धा मिनट इसते भी ले लवां। एक फुल खिड़े है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, आकार लेके, ध्यान बख्शना। सहजे सहजे फुल मुरझा गया, रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे चला गया, रंग उथे चला गया जिदा कोई रंग नहीं, फिर बहुत सुख गया फुल दा रूप भी खो गया। ए रूप किथे चला गया? ए रूप उथे चला गया जिदा कोई रूप नहीं। एक दिन फुल दा आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया? आकार उथे चला गया जिदा कोई आकार नहीं। उन्हों निराकार के निरंकार, आकार तो रहत कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा जिदा कोई आकार नहीं। सारे रूप उसे तो आउंदे जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उसे तो आउंदे जिदा कोई रंग नहीं। वो एक शक्ति है, उस शक्ति नू अनेका नाम दिते गए ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। किसे ने गोपाल किया, किसे ने गोविंद किया, किसे ने राम किया, किसे ने करतार किया, किसे ने मधुसूदन किया, गोरख किया, वाहेगुरु किया, सतनाम किया, अल्लाह किया, खुदा किया। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहंदे ने मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज दा कोई एक नाम ते नहीं है। सूरज नू सन कहंदे ने, सूरज नू भान कहंदे ने, सूरज नू रवि कहंदे ने, सूरज नू सूरज कहंदे ने, सूरज नू खुर्शीद कहंदे ने, सूरज नू आफताब कहंदे ने, कोई एक नाम है। दुनिया दियां सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने। सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अलग अलग नाम ने, बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है, बड़ी दुविधा है। नामा ते झगड़ा है, सूरज दे नामा ते ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नू संस्कृत दे जबान कहंदे ने, संस्कृत दे च रवि कहंदे ने। दो नाम ने, रवि ए बान है, ए रवि है, ए सूरज है, ए आफताब है, ए खुर्शीद है, ए सन है। कबूल है, ठीक है। जिहड़ा सन है ओही आफताब है, जो आफताब है ओही खुर्शीद है, जिहड़ा खुर्शीद है ओही सूरज है, जिहड़ा सूरज है ओही बान है, जिहड़ा बान है ओही रवि है। सानू कबूल है, पर जिहड़ा खुदा है ओही राम है, जिहड़ा राम है ओही अल्लाह है, जिहड़ा अल्लाह है ओही गोबिंद है। इसते बड़े झगड़े ने, इसते बड़ा कलेश है, इसते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाने पुरुष की कहंदे ने, जितनी अज्ञानता धर्म दी दुनिया दे च है, इतनी अज्ञानता समाज दे च, अर्थव्यवस्था दे च, और राजनीति दे च नहीं है, जितना अज्ञान धर्म दी दुनिया च। समाज दे संबंधां दे च, अर्थव्यवस्था दे च, राजनीति दे च इतनी मूर्ता नहीं है, जितनी मूर्ता धर्म दी दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान दा पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ज्ञान दे स्वरूप ने, और कलगीधर पातशाह कहंदे ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगा। एक कोई पुन है ज्ञान, उस मनुख तो सब कुछ ठीक होवेगा। एक कोई पाप है अज्ञान, ये जो कुछ भी करेगा गलत करेगा, ठीक हो ही नहीं सकता। इसनु पूर्ण खुलासे दे रूप ते किसी वक्त मैं फिर बयान करांगा, पर हुण इतना ही अर्ज करा, परमात्मा एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक ताकत है। इस शक्ति नू दो नाम दिते ने, सत ते सता। सत ते सता। एक मनुख कोल बाहर दी ताकत है। साडे देश दे च इक ऋषि होया जिहदा नां सी सहनसर बाहो, हजारां बावां वाला ऋषि। हजारां बावां नहीं आउंदियां, अगर हजारां बावां एक बंदे दियां उन ते सारे हाल च मेरे खले कोई बंदा बैठेगा, मुश्किल है एक भी बैठ सके। हजारां बावां वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा। जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उन्हां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहन सर बाओ दो हथां विच हजारां हथां वर्गी ताकत, दो हथां च इतनी समर्था कि हजारां बंदियां दे हथ जुड़ जाण उस दे अगों, तो सेंसर बाहू हो गया और की है। ओदे अगों हजारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो गए। सेंसर बाहू दह सिर कहने रावण दे दस सिर सन, नहीं दस सिर जितना सोच सकदे ने कल्ला सोचदा सी, दस सिर जितना याद कर सकदे ने कल्ला करदा सी। तदे ते उसकी लंका सोने दी सी, तदी ते चंद सूरज ताके तपत रसोई। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है उस जमाने च उहदे महलां दे सूरज की शक्ति नाल चुल्हे जलदे सन रसोई दे च। उस जमाने च साइंस ने ते अज ये कमाल हासिल किया है, रावण ने उदों हासिल किया होया। महलां दे कलश उहने सोने नाल लाया लदे हुए, इस वास्ते स्वर्ण लंका उस नूं कहिंदे सन। हर पक्ष चो सियाणा सी, बड़ा बुद्धिमान सी, शिवजी दा भगत सी। इस कथा नूं भी मैं छेड़िया ते इस पासे मैं लंबा चला जावांगा, समां इस च लग जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने आप सुन के हैरान होवोगे, रावण दे एक पहलू दी उपमा कीती है। चौबोले महला पंजवा, गुरु अर्जन देव जी दी बाणी। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साट, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। महाराज कहिंदे ने परमात्मा दे प्रेम दा सौदा जे किधरे माया दियां दमणियां नाल होंदा तो परमात्मा धनवाना दी तिजोरी दे चौंदा। सम्मन जो इस प्रेम के दम के होती साड़ सट्टा वट्टा, दमड़ियां दे नाल सट्टा वट्टा हो सकदा, परमात्मा मिल जांदा दमड़ियां नाल। तो रावण होते सो रंक ने, रावण कोई भिखारी नहीं सी। जिन सिर दीने काट, जिन्हें अपना शीस कट के शिवजी दे अगों रख दिता, चूंकि उहदा एक सिर दसां सिरां वर्गा सी, उह इतना सोचदा सी जिवें दस सिर कोई सोचन। उहदे इतने प्रबल विचार सन दस सिर भी नहीं सोच सकदे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंज सिरां दी मंग कीती सी तां पंज खड़े होए, शिवजी ने मंग भी नहीं कीती, रावण कट के अगों रखदा। इस हिसाब नाल ते बहुत वड्डा भगत है। ते रावण कहिंदा है, ए शिव जी, जिस सिर दे उत्ते तेरा आशीर्वाद बधिया हथ नहीं है, मैं उस सिर नूं की करां। ठीक है, मैं सोच लैना, विचार लैना, आलम फाजल हां, विद्वान हां, चार वेदां दा पाठी हां ते चार वेदां दा ज्ञाता भी हां, पर इस सिर दे उत्ते तेरा मेहर भरिया हथ नहीं होया, मैनू आशीर्वाद नहीं मिले, मैं सिर नूं की करा। इतना सियाणा, इतना वड्डा भगत, इह शिवजी दा भगत सी। राम भी शिवजी दे भगत सन, रामेश्वरम दे शिवजी दी पूजा करके ही राम ने लंका ते चढ़ाई कीती, दोवें शिवजी दे भगत सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, सम्मन जो इस प्रेम के दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। सारी दुनिया च खास करके साडे देश च साल दे साल पुतला जलाया जांदा रावण दा, इन्नी बेइज्जती अज तक किसी दी भी नहीं हुई जिन्नी उसदी हुई है। एक दफा किसी दा पुतला जलाया या दो दफा, साल दे साल जलाया जांदा हैरानगी। पुतला खड़ा कर देंगे, सारा दिन लोकी मत्था भी टेक देना, साडे हिंदू वीर मत्था भी टेकणगे, प्रसाद भी रखणगे, भाई हद हो गई जिन्हों फूक देना है, ते जिहड़ा कहिंदे ओह वाकई दुष्ट सी ते फिर इहनू मत्था टेकण दी कीमत। प्राणा विच एहसास है ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਮ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ, ਬੜੀ ਸੋਝ ਬੋਝ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਟੁੱਟੇ ਤੂੰ ਇਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੱਕ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਵੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸੀ, ਸਵੈਂਵਰ, ਸਵੈਂਵਰ, ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਵੈਂਵਰ, ਸਵੈਂਵਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਵਰਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਐਸੀ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਵਰ ਦੀ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੈਂਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਸਵੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਲ ਭਾਵਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਵੈਂਬਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 87% ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ? ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ 87% ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵੈਂਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਨਹੀਂ, ਆਇੰਦਾ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਏਗੀ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਵੈਂਬਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੈਂਬਰ ਆਮ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਤੋਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਅੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਘਿਰਣਾ ਭਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ चेहरे ते आई, फिर अखां बंद हो गई। लक्ष्मण वापस आ गए, राम नू कहिंदा भगवान उते बोलदा ही नहीं। पता है राम ने की आख्या, तेनू बुलाण दी जाच नहीं आई, तेनू ज्ञान लैण दा ढंग नहीं आया, जा ओ विद्वान है। शिवजी दा भगत उहदे कदमां विच खड़ा, उहदे पैरां ते मत्था टेक, फिर हाथ जोड़ के मंग कर, इंज ज्ञान दी मंग करी दी। जिहदे कदमां विच राम लक्ष्मण नू खड़ा करना चाहते ने, ते जिसदे कोल ज्ञान लैणा चाहते ने, ओ मनुख मामूली नहीं हो सकता, मामूली नहीं हो सकता। अद कि इस तरह कीता ते रावण ने जिहड़ी आखरी गल कीती, लक्ष्मण मनुख दी जिंदगी च कल कतई नहीं आउंदा, जो करना है अज कर, जो जरूरी काम होवे कदी मलतवी ना करी, पोस्टपोन ना करी, कल ते ना छुट्टी। जो गैर जरूरी काम होवे मलतवी कर दें, जो जरूरी होवे भूल के भी मलतवी ना करें, जो पुन होवे उनु कदी मलतवी ना करें, जो पाप होवे उनु कल ते छोड़े। गुरु अर्जन देव जी दा वाक जिन्हां दा पुरब मना रहे, पातशाह कहिंदे नै बिलंब धर्मंग बिलंब पापंग। जद कोई शुभ संकल्प अंदर पैदा होवे, साहिब कहिंदे बिलंब नहीं करनी, देरी नहीं करनी। क्यों? देरी करेगा वो जड़ा शुभ संकल्प है कमजोर हो जाएगा, फिर तू वो नहीं कर सकेगा। बिलंब पापं, अगर कोई पाप दा संकल्प पैदा होया देरी करी ताकि वो कमजोर हो जाए। लेकिन होंदा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने चंगियां आईयां आलक करे बुरियाई होवे सेर। बुरा संकल्प पैदा होया बंदा तत छिन करदा है, चंगा संकल्प पैदा होंदा है सोचदा कल सोचांगे परसों सोचांगे। इस तरह मनुख रोज दी रोज बुरा होंदा जा रहा है, चंगियाईयां तो बचदा जा रहा है, क्योंकि चंगियाईयां नूं पोषण करदा है। चंगियाईयां आलक करे बुरियाई होवे सेर, ए महान ज्ञान रावण ने लक्ष्मण नूं दिता है। हुण प्रश्न खड़ा होवेगा, हार क्यों गए? भारत दे इतिहासकार कहिंदे ने रावण राम तो नहीं हारे, अपने भरा तो हारे, विभीषण तो सारे सीक्रेट सारा राज भरा ने दस दिता विभीषण। और चाणक ऋषि कहिंदे ने मनुख दुश्मन दे वार तो बच सकदा है, भरा दे वार तो नहीं बच सकदा। क्यों? भरा नूं सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हो सकता है दुश्मन दा वार खाली चला जाए, क्योंकि उन्हें बहुता ज्ञान नहीं है।